तन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज तन तन श्री सत पातशाह महाराज आप जी की अपार कृपा रे मेरे बख्शीश हुई आप अपने बच्चों पास असा दी बात संपूर्ण कीर्तन करवाए सत पातशाह महाराज जी असा दी बात कीर्तन करने में प्रकार की भूल गलतियां हो गई हो गया अनजान बच्चे समझ के मामा पातशाह महाराज जी गुरमुख प्यारे वालों संगत वालों शब्द भेट विच माया हाजिर करदे ने पातशाह जी आप नाम जानी जान सतगुरु जी सभना दियां चरज कला बख्शिश करनी महाराज जी सेवा लिख चलाना माया विच बरकतां बख्शिश करनी उच्चा सुचा जीवन बख्शिश करना अपने धर्म पर नाम बाणी दी दात बख्शिश करके निवाजना सतगुरु जीओ हर दुमदान फतेह यात्रा।

गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच चक्र चहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमितोज कही जय कोट इंद्र इंद्राण शाह शाहान गणिजय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बाण तृण कहत त्वै सर्व नाम कथै कवन करम नाम वर्णत सुमत दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ।

द्वितीया माल कौ सकाला पहे संग रागनि पां चौथा पहे गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुति उचारी तना श्री ए पांचौ गाई माल राग कौ सक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा प्रबल चांड कौ सक उभारा खौ खट अपहरानत गाए अष्टमाल कौ सक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिला वही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर।

हस्तकीटकेऽपि च समाना रावरञ्चजयसृजाना अद्वयलक्ष्मणगौरामे कल्पवृषङ्के अन्तर्जामि अलक्षरूपाच्छायनभे सारागरञ्चजय रूपनरेखा वञ्जहन समूहते न्यारा आदिपुरसर्वकारा वरञ्जहन जय जादन भाता सत्रमित्र जय जादन माता सत्य दूर सहन्ते नेरा जल सर्वकीर्जाहि पसेरा अनहद रूपना हदवानी च अंतरंजे बहुत भवानी ब्रह्मा भुजन अंत नहीं पायो नेद नेद मुचार बतायो कोटेन्द्र उपेन्द्र बनाए ब्रह्मा रुद्र उपाय खपाए ग्रोग दुर्गुद के रचायो बहुराप ही बीच मिलायो दानव देव मनिंद पारा गण कब्जा चरचा सुचारा भूत भवेक्ष भवान कहानी खड़ खड़के पटपट की जानी सात मात जह जाता पाता एक रंग का हो नहीं जाता सर्व ज्योत के बीज समाना सब हो सर्व ठौर पहचाना काल रहत अनकाल स्वरूपा लख पुरक अभिगत अवधूता जात पात जह जह न परना अभिगत देव अच्छय अनवरमा सबको काल सबन को करता रोग शोक दुखन को हरता एक चित जह एक चिन्ह ध्यायो काल फ

भूत बन चार छित छौना सब दूता धारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है। त्रिण के बछैया धन लोभ के तजैय दित गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताहे पंछी की बडैया देत बगुला विडाल ब्रिक ध्यान ठानियत है। जिते बड ज्ञानी तिनो जानी पै बखानी नाहे असन प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैयता है भूजरी के जैया कह नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है। फल के बछैयता है बांदरी के जैया कह आदि सफिरैयत है तो भूत कह पछानी है। जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के भछैया सो चकोर सम मानिए। सूरज सिवैयता है कौल की बडाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कछ मछ तिंदुआ कहत सब कौल नाब कौल जय ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब दिन चारी रिखी के स नाम के महंत लहियत है।

न्योलिकरम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाय ठंड न बहत है। मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद भेद योग देव नेत नेत कह कहत है। नाचत फिरत मोर बादर करत घोर दामनी अनेक भाव करियो ही करत है। चंद्रमा शीतल न सूर से तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्म से न वेद चारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा झुकन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मार विषण के तेद और पुराण के तिमृत समूहन के होए होए बिते है। मोन दीम दार किते अश्विनी कुमार किते अंसा अवतार किते काल बस भय है। पीरे ओ पिकम्बर किते गने न परते ते भूम ही ते होय के फिर भूम ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मान से महीप और दिलीप कैसे छत्रधारी बड्डो अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिली सर द्रुजोधन से मानदारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक दो बची कपट भेष पोष दी अनेक दानि वावत है। शीश कहो गाह भय मल्ल जो पिकाट दे अनेक दंड सो तो न दंडौत अस डांग अथ तीस कहो कहा भयो रोगी जो पेडार रहे उर्ध मुख मन ते न मुंड ने हरायु आदि सको कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश कहो। शीश पटकत जाके कान में खजूर दस मुंड छटकत मित्र पुत्र हूं के शोक सौ आग को चरिया फल फूल को भछैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न बोक सौ कहा भयो भेड़ जो खसत शीज वृक्षन सो माटी को बछैया बोल पूछ लीज जो कसौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर गन गजोई करत है। एक पाय ठंड सदा वन में रहत ब्रिज फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काग और चील देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में न हुजलीन भावना यकीन दीन कैसे के तरत है। जैसे एक सोंगी कहूँ जोगिया बैरागी बने का बहु संन्यास वेश बन के दिखावई कहूँ पवन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की कुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पर लगावे बारी कहूँ दंडधारी होय के लोगन भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोग पावई। पंच बार गीदर पुकारे पर शीत काल कुंचर ओगा दहा अनेक दा पुकार ही कहा भयो जो पे कल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चूर टाक उठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़े जोड़ गंग धार डार डार।

करता करीम सोई राज करहिम उई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही किसे व सब ही को गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहु राम सीत सोई पूजा निवाज ओई मान सब एक पया नेको भ्रमा है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यार न्यार देशन के

आग उठ न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कणों का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हो, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भच, केते अच वच हो।

लीन ताही तयो बज सब ताही मैं समाहेंगे। कुकत फिरत किते रोवत मरत किते जल मैं डुबत किते आग मैं जरत है। किते गंग वासी किते मदीना मक्का निवासी के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत किते भूम मैं गड़त किते सुआ पे चढ़त किते दुख को भरत है। ज्ञान मैं उड़त किते जल मैं रहत किते ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बंडे बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जाप से घास हारे चंदन लगाए हारे चुआचार पूज हारे बाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मडी मटली बहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब बच हारे पंडित।

न सोगं न मोहं न मातं न कर्मं न वर्मं न जन्मं न जातं अद्वैखंग भेखंग जोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयं परापरं प्रज्ञा प्रकाशी अचेतं गच्छयाद अद्वय अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आदभंगे नमो आदभंगे किते कृशंसे कीट कोटे उपाय उसारे गड़े।

मुंडे प्रचंडे ब्रह्माथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सुभूते भविखे भवान चित्रे नरायंग नरंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न जोभंग भूतंग फेकंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र स्नेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग।

कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हूँ कहूँ जस विद्या धरे मानवी हूँ कहूँ राजसी हूँ कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम वाणी कहूँ गोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र

कहूँ सुत सिखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्धावस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज।

नृत्य विद्या कहूँ नाग वाणी कहूँ गारुड़ गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो गहूँ वीर विद्या भूतंग प्रभा हो गहूँ झैल झाला धरे छत्र धारी कहूँ राज साज

सन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात, जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात, जय करम बरम नहीं।

काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत काम परखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्ध बाह देशन भ्रमंत कई उर्ध मद पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र तुचरंत वेद कई गोक काव कथत कते कई अगन होत्र कई पौन हार कई कर्त कोट मृत को आहार कई कर्त साक पै पत्र भक्ष नई तदप देव होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या व्रतीत कहू वेद रीत जगे आद करम कहूँ अगन होत्र कहूँ तीर्थ धर्म कई देश देश भाकार टंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई कर्त बांध बांधन विचार नहीं नैकतास पायत न पार कई तीर्थ तीर्थ भरमत सो भरम कई यज्ञ होत्र कई देव करम कई कर्त वीर विद्या विचार नहीं तदपतास पायत न पार कहूँ राजरीत कहूँ जोग धर्म कई सिमृत शास्त्र उचरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मख को बखान कहूँ कर्त ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ बिरद चार कहूँ कर्त जच कंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घदान कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ कर्त शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अग्नताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदपतास पायत नांत कई कर्त कोट विद्या विचार नहीं तदप दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान भव कर्त।

जय जम्पह जुगण जूह जुअंग कंपह मेर पयाल भुअंग तप ताप सर्व जलेर धलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप भेद भयंगन खंड भूत छेद छ्यंगन काल पाल दयाल स्वंग जे ठट्यंग मेर आकाश भुआंग अनखंड मंड प्रचंड नरंग जे रच्यंग देव देव वरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जे रच्यंग सर्व मकीन मका जे राग न रूप न रेख रुखंग जे ताप न साप न शोक सुखंग जे रोग न शोक न भूख भुयंग जे खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न माद वितंग जय रचयंग छत्री छत्र चितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वैख न दाग न दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आव प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उद भुजंग की ये देव देव सराध पितंग न खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न जोत जुतंग जे तात न मात न भ्रात सुतंग जे रोग न शोक न भोग भुअंग जे जंप है किन्नर जछ जुअंग नर नार नपुंसक जाय किए गण किन्नर जछ भुजंग दिए गज बाजर थादिक पांत गणंग भवभूत भवेख भवान तुअंग जहे अंडज सेतज जेर रजंग रज भूमा काज पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भुव मेरा काश निवास छितंग रज रोजे का

दूता भूता चून मतंगन गाद ब्याद अनाद गतंगन खेद अभेद अचेद नरंग जे चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जे राग न रंग न रेख रुगंग जे शोक न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आदि सरंग जे बंदत देवा देव नरंग गण किन्नर जाचे भुजंगर चे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज वृतंग जे पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जप सुत सिंध अधो मुख तावत पै कई कल्पन लो तब ताप कर नहीं नैक कृपा निध पान पर जय फोकड़ धर्म सभत जह एक चित्त कृपा निध को जप है त्यो या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रति एम वेद उचारत सार सुती जो वारस के जस के रस।

न तात्मात जात है, न पाद चेहन वर्ण है, अदेक सेक फेक है, सदीव विश्व भरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेख विश्व भरण है, जिमी जमान के विखे सदीव करम भरम है, अद्वेक है, अभेक है, अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्वठोर मैं विशेख।

न मान है, न मौत है, न साक है, न संक है, न जाच है, न गंधर्व है, न नार है, न नार है, न चोर है, न साहु है, न साहु को कुमार है, न ने है, न गे है, न देह को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छाल को मिलाओ है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है।

अभूत है, अछेद छेद है सदा, गंज गंज गंज है, अभूत फेक है, बलिय रूप राग रंग है, न द्वैख है न भेख है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है न पात।

न कर्म है न भ्रम है न धर्म को प्रभाव है न यंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है न काम है।

नराध भी करंत सेव है सदा सितस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आद जे बटे तपस्तपी विशेखी है बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ भेखी है अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात बात मंत्र मित्र सत्र स्नेह जानिए सदैव सर्वलोक के कृपा।

रूप राग न रेख रंग न जन्म मरण विहीन आदनाद अगाद पुरख सो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र न तंत्र जाको आद पुरख अपार हस्त कीट बिखे बस सब ठौर मैं निर्धार जात पात न तात जाको मंत्र मात्र मित्र सर्व ठौर बिखे रमयो जे

दुष्ट घर नंग पुष्ट कर नंग सर्व के प्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के जन काम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुक्ता सर्व

ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार, हार हार थके सबे नहीं पाइये तह पार। नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सभय कर कूट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार, सोद सोद थके महा

गुंगुरु गमंकण शास्त्र जमंकण फण्यर फुंकारण धरम तुझे अष्टाट प्रहासन सृष्ट निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुध सन्नाहे अगमथा हे एक वृते जय जय उसी मैं का सुरमर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन पृष्ठ विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम उदारे नरक निवारे आद कथे किंकण

नवी प्रकार खंड सर वर वर खंड दुष्ट प्रदर खंड बितल दले अष्टायद बाहन बोल निवाहन संत पनाहन गुड़ कते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद नाद अगाध प्रते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रदा है अर्थ

दीनन की प्रतपाल करें नित संतु बार्ग नीमन गारे पछ पशु नग नाग नरादिप सर्व समय सबको प्रतपार पोखत है जल मैथल मैपल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दोखन देखत है पर देत नहारे दाहत है दुख दुखन का दल दुजन के बल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके पदमावत वेद कते भेद उचारे रोज ही राज बिलोक तराजक रोख रुहान की रोज नटारे कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे हंगमेव न भेव लख्यो भ्रमस्यो भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ नाए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पत स्यों किन श्री पदमापत पाए आद अनंत अगाधत वेक्षो भूत भविख भवान अभय है अंत विहीन अनाथम आपदा का दुख छिद्र छय है लोगन के करता हरता जल मै धल मै भरता प्रभ है दीन दयाल दया का श्रीपद सुंदर श्री पदमापत ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त अगेह अक्षय है जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे है काहे को डोलत है तुम्बरी सुत सुंदर श्री पदमापत लय है रोगंते सोगंते जल जोगंते भव भांत बचावे शत्रु अनेक चलावत गावत तन एक न लागन पावे राखत है अपनो कर दे कर पाप संभोहन भेट न पावे और की बात कहा कह तो सो सो पेट ही के पट बीच बचावे जच भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूमा काज पताल रसातर जच भुजंग सब सिर न्यावे पाए सके ने पार प्रभा हूं को ने तही ने तह वेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानन से रुमनारिक से सब

पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमालय ध्यावे गोर कर तेज गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साध पौन साधना कि तेग बांधे अरब के अरब यराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कूरे सी जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है। मरहट्टा मंगल तेरी मन सो तपस्या कर दृढ़ वै तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली

गोखा गुण गावे चिन मचीन के शीस न्यावे देवते ध्याय दुख देह के दलत है जिन तोह जायो तिन्ह पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल स्यों फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग दान को अभि

काल हूँ के काल है के सतरण के साल है के मित्रण को भोगत है के वृद्धता की बासी है। जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सार है। जान को बचैया है मान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्रीहन नर है। विश्व को भरण है के अपता को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाई है न पार पार वार हूं को पार जग की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय गावे हब्बसी हल।

पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसे रामपुर सोरासी सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपा से चंदेरी गोड चांदनी से चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती से फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सीसा सी सुरंगाबाद निके सोहियत है हिमा से हिमालय हर हार सी हलब्बा ने हंस कैसे हाजीपुर देख मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगीर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगधार बकान सी बुलंदाबाद कीरत तिहार के उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी सके दुरंगी मकरान के बृतंगी तेरे गीत गायत है फकरी गंधारी गोर गखरी गर्दे जाचारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाओ काम रूप कमाओ सर्वठौर मैं विराज जहाँ जहाँ जाइयत है पूर्ण प्रताप यंत्र मंत्र देता विनाथ की।

रात कसम वसा रहते कम जात नानक नावे बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सदगुर सदपुरखा बिना करो गुर पास हम कीरे कर्म सतगुर।

लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किलबिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अलदुजा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन भाषत

कह चौपई सम सत्रह सहस भणी जय अर्ध सहस फुन तीन कह जय भादव सुधी अष्टमी रवारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा

दास तिहारा ज्ञान आपना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मैं हार परा मैं आन द्वार तोय अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरिन संघारो।

सपना गला सुमरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साची साहिबा क्या नाही घर तेरे घर ता तेरे सब किछ है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द घनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शान सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुर विटो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनो हो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया धुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संता पुतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुर ते जानी

0: स्वयंभव स्वतंत्र सदा सर्व जुगे दुकालं प्रणाशी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते
1: देव ते गुप्त त्रंबेद्रम याप्त जिन नानक गुरु गोविंद सिंह जी काल पर की सहाय दरबार में क्रोध दरबारा सचखंड सहनकारा लक्ष्मी गरीब मित्र।